0: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: चाहा चा बोलो बोलो प्यार है, माओ चांदी आला करिश्मा कपूर, अच्छा माओ गंदा आला शाहरुख खान, अच्छा अच्छा।
0: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सुबह सुबह
2: मंडल।